0: फैमिली फिजिशियन दा स्वागत करता है।
1: गर्मजोशी, समझदारी ते प्यार नाल ओ तुहाडे परिवार नू कंफर्टेबल ते वेल केयर्ड फील करवाउण लई हमेशा तैयार है।
0: हुण तुसी उहनां नाल इंग्लिश, हिंदी, उर्दू ते पंजाबी विच वी गल्लबात कर सकदे हो ताकि तुसी घर वर्गा एहसास महसूस करो।
1: नवे पेशेंट्स नू एक्सेप्ट हो रहे ने, अज ही अपने परिवार लई फैमिली डॉक्टर सिक्योर करो।
0: कॉल करो 587-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक, वॉक इन सवेरे 9 बजे तो शाम 6 बजे तक।
1: सानू मिलो किंग्स व्यू बुलेवर्ड ते या कॉल 587-360-6890।
0: छोटे परिवार की सेहत साड़ी जिम्मेदारी।
2: हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब।

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0300-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देती है मुकम्मल केयर
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है
2: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी
3: हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब लिसनिंग टू कैलगरी मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो सबरंग 94.7 FM
4: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250-kilometer network. More visibility, more trust, more customers. Let your business be seen, heard, and celebrated. Book your live promotion today with Sabrong Radio. Your brand, on air and on ground. Visit sabrong.ca or call 403-400-0203.

नेपाल की त्रासदी से हम सब स्तब्ध हैं और दुनिया को फिर एक बार इस त्रासदी ने याद दिला दिया है कि जलवायु परिवर्तन किस तरह हमारी दुनिया के तहस नहस होने की वजह बन सकता है, क्योंकि ये त्रासदी पहाड़ों में ग्लेशियरों के टूटने से आई है और हम जानते हैं कि धरती के बढ़ते तापमान की वजह से पहाड़ों में जमा बर्फ यानी ग्लेशियर दरक रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज करेंगे आगे बात, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि शो में क्या क्या होगा। नेपाल में आखिर क्या हुआ और क्या हमारा सामना और ऐसे संकटों से होता रहेगा। पाकिस्तान में खजूरों की खेती किन मुश्किलों का सामना कर रही है। हांगकांग से गाय और भैंसे क्यों गायब हो रही हैं। और आखिर में चलेंगे लंदन जू में जहां जानवर अपना वजन करा रहे हैं। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ की बहुत सारी खबरें, वीडियो और रील अब तक आप देख चुके होंगे। वहां हुई तबाही के मंजर भी आपकी टाइमलाइन का हिस्सा बन रहे होंगे। ये वाकई एक बड़ी त्रासदी है, लेकिन चिंता की बात यह है कि क्या हमें अब इस बात के लिए हमेशा तैयार रहना होगा कि ऐसी त्रासदी बार बार आ सकती है। नेपाल में गाद, बर्फ और मलबे का ऐसा रेला आया कि गांव के गांव बहा कर ले गया। जानकार कहते हैं कि ऊपर

0: पर सुदूर पहाड़ों में ग्लेशियर से बर्फ टूटने की वजह से ये आपदा आई, लेकिन जिस पैमाने पर ये सब हुआ उससे एक्सपर्ट भी हैरान हैं। वो इसे अब भी समझने की कोशिश कर रहे हैं।
1: वो ऊंचाई जिस पर हम समझ रहे हैं कि बर्फ टूटी, वो समुद्र तल से 5200 मीटर ऊपर है और फिर वो एकदम से करीब 1200 मीटर नीचे गिरी। गिरने के दौरान बर्फ पिघली और फिर इसके रास्ते में जो कई टन गाद तलछट आई वो उसे लेकर आगे बढ़ गई। फिर पानी 3000 मीटर और नीचे गिरकर नदियों तक पहुंचा। इसका बहुत असर हुआ, टूटी हुई बर्फ को बहुत रफ्तार मिल गई और उसके साथ बेतहाशा गाद तलछट चल रही थी।
2: शायद वास्तव में हुआ ये कि ये लगातार आगे बढ़ता रहा और नदी की घाटी में मौजूद सारा पानी अपने साथ लेकर उसे सामने की ओर धकेलता गया, ठीक वैसे जैसे कोई सिरिंज दबाने पर अंदर का पानी आगे की ओर निकलता है। ये पानी बर्फ को भी पिघला रहा था और दूसरे स्रोतों से भी पानी इसमें जमा हो रहा था। नतीजा ये हुआ कि पानी का प्रवाह बहुत ज्यादा सघन और बेहद तेज हो गया, कुछ ऐसा जो देखने में लगभग कंक्रीट जैसा था।
0: पृथ्वी के बढ़ते तापमान से ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर और परमाफ्रोस्ट पिघल रहे हैं। चट्टाने कमजोर हो रही हैं, जो पहले पहाड़ी ढलानों को स्थिर रखती थीं। भारी बारिश इस पर दबाव को और बढ़ा रही है।
2: पानी को 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार पकड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। कभी कभी रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाती है। रास्ते में जो भी आता है वो इसमें समा जाता है और बहाव तेज और ताकतवर होता जाता है। फिर भी मैं कहूंगा कि मैंने उन वीडियोस जैसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। मैंने तबाही के बाद का मंजर देखा है और काफी बाद की स्थिति भी देखी है, लेकिन वहाँ उस वक्त जो हो रहा था वो अविश्वसनीय था।
0: वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि इस तरह की आपदाओं के लिए जलवायु परिवर्तन को अकेला कारण नहीं मान सकते, लेकिन इसकी वजह से ऐसी त्रासदियाँ जल्दी जल्दी आ रही हैं।
1: हम
3: कल्पना भी नहीं कर सकते कि बिना किसी ग्लेशियल झील के इतनी बड़ी बाढ़ कैसे आ सकती है। इसलिए इन घटनाओं के पीछे के तंत्र को समझना और उसका ज्ञान होना बेहद जरूरी है। हमारे पास निगरानी की व्यवस्थाएं और विज्ञान है और हम इस दिशा में काम भी कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ों तक भौतिक रूप से पहुंचना मुश्किल है और संसाधनों की कमी के कारण हम ऊंचे पहाड़ों में होने वाली ऐसी आपदाओं को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं। इस बीच पहाड़ों, ग्लेशियरों और ऐसी दूसरी प्रक्रियाओं को लेकर हमारी समझ में जो कमियां हैं, उससे ऐसी आपदाओं का खतरा बढ़ता जा रहा है।
0: ये बात साफ है कि जलवायु परिवर्तन बढ़ने से हम इस तरह के और ज्यादा संकटों की चपेट में आ सकते हैं। क्या आपको पता है कि खजूरों का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? इसका जवाब है सऊदी अरब, जहां 2024 में 19.28 लाख टन खजूर पैदा हुए। इसके बाद इस लिस्ट में मिस्र, अल्जीरिया और ईरान का नाम आता है और पांचवें नंबर पर आता है इस लिस्ट में भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान। क्या आपको पहले से ये बात पता थी? खैरपुर, इसी इलाके की बदौलत पाकिस्तान दुनिया भर में खजूरों का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले देशों में पांचवें पायदान पर आता है। पाकिस्तान में जितना भी खजूर उगाया जाता है उसका 80% इसी इलाके से आता है। जुलाई के महीने में जब खजूरों का सीजन अपने पीक पर होता है तो सिंध प्रांत के इस इलाके में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है। यहाँ पर काम करने वाले लोग कहते हैं कि इस इलाके में गर्मी साल दर साल बढ़ती जा रही।

0: जैसे अब बारिश का बदलता पैटर्न भी उनके लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है।
1: हाँ बिल्कुल, क्लाइमेट
2: हाँ बिल्कुल, जलवायु का असर पड़ता है क्योंकि खजूर गर्म मौसम में ही पकते हैं। जैसे कि अगर बारिश हो जाए तो हम पर बहुत असर होता है क्योंकि बारिश के बाद खजूर खाने लायक नहीं बचते, वो मीठे होते हैं, अगर उन पर बारिश पड़ जाए तो वो बर्बाद हो जाते हैं, फिर उनकी वो क्वालिटी नहीं रहती, क्वालिटी खराब हो जाती है।
0: गर्मी से बचने के लिए यहाँ ये मजदूर अपना काम कई बार रात में 2 बजे ही शुरू कर देते हैं, फिर दिन में आराम करते हैं और जब शाम होने लगती है तो काम दोबारा शुरू हो जाता है। पेड़ से खजूरों को तोड़ने के बाद उन्हें आग पर उबाला जाता है, इसके बाद उन्हें धूप में सुखाया जाता है और फिर उनकी छटाई और सफाई करने के बाद उन्हें पैक कर बाजार में भेजा जाता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत ऐसे फार्मों से होती है। शहर क्या सिर्फ इंसानों के लिए बने हैं? वहां जानवरों के लिए कोई जगह नहीं है। सच यही है कि दुनिया के बहुत से हिस्सों में बढ़ते शहरीकरण के बीच जानवरों को शहरों से दूर किया जा रहा है, खासकर मवेशियों को, लेकिन हर कोई इस बात को पसंद नहीं करता। आपने आमतौर पर हांगकांग की ऐसी तस्वीरें ही देखी होंगी, ऊंची ऊंची इमारतें और चमक दमक से भरपूर, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक केंद्रों में से एक है। लेकिन ये भी हांगकांग है, ग्रामीण हांगकांग, जहां आवारा पशु अपनी मर्जी से घूम सकते हैं। दरअसल यहां जानवर हमेशा से आवारा नहीं थे। 1970 के दशक में हांगकांग में जैसे जैसे शहरीकरण शुरू हुआ तो किसानों ने अपने मवेशियों को यूं ही छोड़ दिया, लेकिन अब यहां रहने वाले लोगों को डर है कि ये जानवर कुछ दशकों में यहां से पूरी तरह गायब हो जाएंगे।
3: पिछले साल यहां आखिरी गाय की भी नसबंदी कर दी गई। ये असल में यहां मवेशियों की आखिरी पीढ़ी है। 8 से 10 साल में ये जानवर गायब हो जाएंगे। ये जानवर बहुत सालों से यहां हैं। हम नहीं चाहते कि वे कहीं जाएं। वो यहां के बाशिंदे हैं, ये उनका घर है।
0: यहां रहने वाली भैंसों की नसबंदी पहले ही कर दी गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो मवेशियों को यहाँ से हटाए जाने की प्रक्रिया को रोक तो नहीं सकते, लेकिन वो इससे बहुत नाराज हैं।
3: मेरी 5 भैंसों को वो माइपो ले गए। वो कहते हैं कि माइपो भैंसों का स्वर्ग है। मैं कहती हूँ सब बकवास है, वहाँ कोई जानवर नहीं है जिनके साथ वो घूमे लड़े, कितना बोरिंग है।
2: भैंसें जीवित प्राणी हैं और ग्रामीण जीवन की पहचान है। भैंसें अगर नहीं होंगी तो फिर ग्रामीण इलाके भी नहीं बचेंगे, तो भैंसों को ना रखने की बात मुझे कतई पसंद नहीं है। इस सोच से मैं पूरी तरह असहमत हूँ।
0: हांगकांग के कृषि मत्स्य पालन और संरक्षण विभाग का कहना है कि वो आवारा मवेशियों को पकड़ता है और उनकी सर्जरी के जरिए नसबंदी करता है। विभाग के मुताबिक आवारा गौवंश की आबादी को स्थिर करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। 2022 में यहाँ हुए एक सर्वेक्षण में भूरे रंग की गायों की संख्या 940 और भैंसों की संख्या 180 बताई गई थी। विभाग ने 2021 में कहा था कि अगले एक दशक में इन मवेशियों की आबादी घटकर आधी होने का अनुमान है, लेकिन आबादी को कम करने के लिए जो तरीका अपनाया जा रहा है उससे स्थानीय लोग खुश नहीं हैं। और अब चलते हैं लंदन के जू में, जहां बीते दिनों जानवरों को तोला गया, लेकिन इसकी जरूरत क्या है, चलिए देखते हैं। हम्बोल्ट पेंगुइन खुशी खुशी स्केल पर चढ़ रहे हैं। दरअसल लंदन के चिड़ियाघर में हर साल जानवरों का वजन किया जाता है। ये काम बहुत जरूरी है ताकि इससे जानवरों की सेहत और शारीरिक विकास के बारे में जानकारी मिल सके, और देखकर तो लगता है कि जानवरों को भी इस काम में खूब मजा आ रहा है। इस चिड़ियाघर के सबसे छोटे जानवर हैं पार्टूला स्नेल, जिनका वजन करने के लिए उन्हें पहले एक पेट्री डिश में रखा जाता है और एक छोटे से स्केल पर फिर उनका वजन तोला जाता है। इनमें से ज्यादातर का वजन 1 ग्राम से भी कम रहा। अब जानवर छोटा हो या बड़ा, सेहत सबकी अहम है।

इसीलिए हर साल यहाँ सबका वजन किया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। होगी आपसे जल्द मुलाकात। अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0200-403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समीर रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देती है मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए। सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर, जहां होता है एनर्जी एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन। चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग, कोई खास इवेंट, प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन, हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते, हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं। हमारी टीम पहुंचती है आपके पास, लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में। ज्यादा पहचान, ज्यादा भरोसा, ज्यादा ग्राहक। अपने बिजनेस को बनाइए खास, दिखाइए, सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए। आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ, आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी। Monday, Tuesday, Thursday and Friday 7 to 8 p.m. Sunday 1 to 5 p.m.
4: Asia Pacific Immigration Consulting Limited. Student visa, visitor visa, super visa, LMIA applications, family immigration, provincial nominee application, ate citizenship application vich lamba tajruba te maharat rakhda hai. Tuhadi sahulat layi main Maninder Singh Tillo ate Inderjot Kaur Tillo ikko chhat hai immigration ate insurance diyan sewawan pradan karde hain. Sanu sampark karne layi 403-225-1111. Maninder Singh Tillo, Asia Pacific Immigration Consulting Limited.
5: Regulated Canadian Immigration Consultant.
4: 403-225-1111.
3: From the heart of Calgary to every corner within a 250 kilometer reach, Sabrang Radio.

0: जर्मनी की पांचवी डिवीजन में श्वार्ज्वाइस एसन के लिए खेले। तो खिलाड़ी बेरोजगार कैसे होते हैं, इसकी कई वजहें हैं। कई बार बस कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, कई बार क्लब खिलाड़ियों से छुटकारा पाने के लिए सैलरी देना बंद कर देते हैं, कुछ क्लब तो कानूनी न्यूनतम वेतन भी नहीं देते। खिलाड़ियों की यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर उल्फ बारानोव्स्की ऐसा बहुत कुछ देख चुके हैं।
1: अभी हमारे पास एक खिलाड़ी है जिसे निकाल दिया गया था। क्लब ने उसे एक अपार्टमेंट दिया था और जब वो उस अपार्टमेंट में वापस जाना चाहता था तो ताले बदल दिए गए थे। तो ऐसा भी होता है। हमारे पास विदेश से आए खिलाड़ी भी रहे हैं जिन्हें एजेंटों ने फुसलाया था। कुछ मामलों में परिवारों ने पैसे दिए ताकि वो जर्मनी में आ सकें, लेकिन एजेंट उन खिलाड़ियों को किसी क्लब में शामिल नहीं करवा पाए। एक तरह से उन्हें यहाँ यूं ही छोड़ दिया गया। फिर जितना हम कर सकते थे हमने उन खिलाड़ियों का ख्याल रखा।
0: यहाँ खिलाड़ी सीखते हैं कि बेरोजगार होने पर उन्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, ये एक आम बात है। लुकास सिनकेविच और क्रिस्टियन रान जैसे पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी इस कैंप में ट्रेनिंग ले चुके हैं। यहाँ खिलाड़ियों को सिर्फ शारीरिक और मानसिक मदद नहीं मिलती, उन्हें उनके अधिकार भी समझाए जाते हैं। VDB उन्हें सलाह देती है और प्रेजेंटेशन और वर्कशॉप आयोजित करती है। ट्रांसफर विंडो बंद होने से पहले यूनियन करीब 80% खिलाड़ियों को क्लब दिला पाती है, लेकिन यान आइशर जानते हैं कि प्रोफेशनल फुटबॉलर बनने का सपना कभी भी डरावने ख्वाब में बदल सकता है।
2: पहले आप मैदान पर तब जाते थे जब आपका मन करता था। आप मैदान पर इसलिए नहीं जाते थे कि आपको जाना ही है, लेकिन जब आप फुटबॉलर होते हैं तो लगभग हर दिन आपकी ट्रेनिंग होती है और आपको हर दिन परफॉर्म करना होता है। और कभी ऐसा भी होता है जब मैदान से बाहर की कोई बात आपको थोड़ा परेशान करती है, लेकिन आप उसे मैदान पर नहीं आने दे सकते।
0: एक हफ्ते बाद वो वाटनशाइड 09 के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच खेलते हैं। क्लबों और स्काउट्स का ध्यान खींचने के लिए यान और योशुआ के पास ये आखिरी मौकों में से एक है। बेरोजगार फुटबॉलरों की टीम चौथी डिवीजन का मुकाबला कर सकती है। फाइनल स्कोर 3-4। योशुआ और बाकी खिलाड़ियों के लिए वक्त निकलता जा रहा है।
3: सबसे बड़ी चुनौती सच में खुद पर काबू पाना है। जरूरी नहीं कि आसान रास्ता लिया जाए, सुरक्षित रास्ता नहीं बल्कि एक बार फिर साहसी बनना और कहना मैं कुछ और हफ्ते इंतजार करूंगा और देखूंगा कि क्या होता है।
0: लेकिन ट्रांसफर विंडो बंद होने से सिर्फ एक हफ्ते पहले भी यान को अब तक कोई क्लब नहीं मिला है और योशुआ भी ऑफर का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि ये कोई अनोखी बात नहीं है, ट्रांसफर विंडो के आखिरी घंटों में भी क्लब बदलने का मौका मिल सकता है।
4: ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਣ 'ਚ ਇਹ ਸਿਤਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਚਮਕ ਦਮਕ ਅਤੇ ਤਾਮਯਾਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਾਮ ਹੈ, ਬਟ ਇਹੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਨੇ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮਿਨੀਮਮ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਬੈਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇੰਜਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਟੋਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 250 ਈਸਟ ਆਫ ਸਟੋਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ EMS ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 9:15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਕਨਾਈਟ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਈਸਟ ਆਫ ਸਟੋਨੀ ਟ੍ਰੇਲ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ 20s ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਟਹਿਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਬਟ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ए बैल, कबीर कहाँ रहते हैं? सवाल ये था। उत्तर ये है कि कबीर का घर तो बहुत ऊंचे शिखर पर है और वहां तक पहुंचने की रास्ता जो है बड़ा चिकना रपटीला है। इतना रपटीला है कि उस पर चींटी तक के पांव नहीं टिकते और लोग बाग हैं कि बैल लाद करके उस पर चढ़ना चाहते। जिस रास्ते पर चींटी तक फिसलती है उस पर कुछ लोग अपना बैल लेकर के, ज्ञान से अपनी पुस्तकों से लदा हुआ बैल लेकर के चढ़ना चाहते हैं, तो पांव ना टिके पिपल का लोग अन लादे बैल। तो पंडित सरोजी समझ गए कि किससे पाला पड़ा है। इंसॉल्ट ये कि अंततः वो कबीर को परास्त करने की बजाय स्वयं कबीर से इतने प्रभावित हुए कि कबीर के शिष्य बन गए और काशी की कबीर चौरा परंपरा के मुताबिक कबीर के शिष्य और चौरा के संस्थापक पंडित महंत सूरत गोपाल महाराज जो थे वो ये पंडित सर्वजीत ही थे, जो कबीर के एक तरह से पहले चौरा परंपरा के मुताबिक, ध्यान दीजिएगा, पहले शिष्य बने। तो कबीर में ऐसा क्या था? कबीर ने तो कभी ये दावा किया नहीं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं समझ लेना चाहिए जैसा कुछ लोगों को लगता है। हो सकता है कि कबीर पढ़ना ना जानते हो, लिखना ना जानते हो, हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कबीर के निरक्षर होने के प्रमाण स्वरूप एक पंक्ति बार बार दोहराई जाती है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो लेकिन कबीर ने यह भी लिखा है कि सास संबंध की मसी करूं, लेखनी करूं बनराई। तो अगर पहली पंक्ति के आधार पर आप ये कहें कि कबीर लिखना नहीं जानते थे, तो दूसरी पंक्ति के आधार पर, जिसका मतलब यह है कि सातों समुद्रों की स्याही हो और सारे जंगल मेरी कलम बन जाएं, तब भी मैं भगवान के गुण नहीं लिख सकता, तो उससे ये सिद्ध हो जाएगा कि बड़े भारी लिखाड़ थे। समझने की जरूरत इस बात की है कि कबीर के समाज में और भारतीय समाज में आज तक, इस बात पर बहुत ध्यान दीजिए दोस्तों, साक्षर होना और बुद्धिमान होना पर्यायवाची नहीं होता। पढ़ा लिखा बेवकूफ नहीं हो सकता, इसकी कोई गारंटी नहीं, और हर गैर पढ़ा लिखा बेवकूफ ही हो इसकी भी कोई गारंटी नहीं। कबीर का समाज तो ऐसा समाज था और आज तक है, हमारे समाज में आज तक ओरल ट्रेडिशन का बहुत महत्व है। तो कबीर पढ़ना लिखना जानते हो या ना जानते हो, लेकिन उनके समय में विभिन्न प्रकार की जो साधनाएं उपलब्ध थी, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की ट्रेडिशंस उपलब्ध थी, उनसे कबीर बखूबी वाकिफ थे, इसमें कोई संदेह नहीं। और उन ट्रेडिशन से वाकिफ होने के साथ कबीर ने उनमें से किसी को भी जस का तस फॉलो नहीं किया। कबीर ने सीखा सबसे, ग्रहण सबसे किया, नाथपंथियों से, यानी दूसरे शब्दों में बौद्ध परंपरा से, सूफियों से, वैष्णवों से सबसे संवाद था कबीर का, तांत्रिकों से, शाक्तों से, सबसे कबीर ना कुछ पाया। आप यूं कह सकते हैं कि कबीर ने शब्द तमाम परंपराओं से लिए, तमाम शब्दकोशों से लिए, वाक्य अपना रचा, कबीर के वाक्य का व्याकरण अपना है, कबीर का अनोखापन इसमें है। तो ये जो व्यक्ति थे कबीर नाम के, ये क्या थे, कौन थे, इनके बारे में हम क्या जानते हैं? तो जैसा मैंने आपसे कहा कि एक तो यही कि जन कबीर का शिखर घर, दूसरा ये, एक बात बहुत स्पष्ट है मित्रों, 18वीं सदी तक इस बारे में कोई दो मत नहीं है। ये जो कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, ये चर्चा पहली बार 18वीं सदी में आती है। भक्तमाल की एक टीका लिखी गई थी 18वीं सदी में, उसमें ये चर्चा पहली बार आती है। इसके पहले चाहे अनंतदास हो, चाहे रज्जब हो, चाहे कोई और हो, कोई ये संदेह प्रकट नहीं करता कि कबीर जुलाह दंपत्ति के बायोलॉजिकल सन थे या एडॉप्टेड सन थे। वो क्लियरली बायोलॉजिकल सन थे, औरस पुत्र थे, नीरू और नीमा के वो औरस पुत्र थे, बायोलॉजिकल सन थे। 18वीं सदी में कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं, कोई सज्जन ऐसी कल्पना करते हैं कि कबीर को यह कहा जाने लगता है कि वे विधवा ब्राह्मणी के त्यागे गए पुत्र थे। ऐसी कोई चर्चा

18वीं सदी के पहले नहीं मिलती। तो एक बात तो ये, दूसरी बात ये, बनारस के निवासी थे, इतना हम सब जानते हैं। तीसरा यह है कि कुछ लोगों को अगर छोड़ दें तो अधिकांश कबीरपंथी भी और स्कॉलर्स भी ये मानते हैं कि कबीर गृहस्थ थे, उन्होंने कोई संन्यास नहीं ले लिया था। और जिसकी साखी, जिसका साक्ष्य उनकी अपनी रचना से भी मिलता है, साइयता दीजिए तामे कुटुंब समाये, हों भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए, यानी मैं अपने कुटुंब का पालन कर सकूं, ये चिंता है कबीर को। और ये ध्यान देने की बात है कि कबीर की कविता में जो मेटाफर्स आते हैं, जो रेफरेंसेस आते हैं, जो सिमलीज आती हैं, वो जुलाहे के कारोबार से आते हैं। उनका बहुत मशहूर पद है, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये जो चीजें हैं, कबीर काशी के जुलाहे, नीरू और नीमा के औरस पुत्र, और जो मैंने आपसे पहले कहा कि रामानंद के साथ उनका एक शिष्य संवादी का संबंध था। रामानंद वैष्णव आचार्य थे, लेकिन अलग तरह के वैष्णव आचार्य थे, अत्यंत उदार, अलग तरह के। और यह संबंध भी 1913 तक इस पर किसी ने संदेह नहीं उठाया। इस पर पहली बार संदेह किया गया 1913 में। इसके पहले आप कोई भी स्रोत देख लें, चाहे कबीरपंथी स्रोत देख लें, चाहे नाभादास को देख लें, और चाहे सूफी स्रोतों को देख लें, दारासुकों को देख लें। दारासुकों ने हसनातुल मारफीन में बाकायदा कबीर को रामानंद का शिष्य कहा है, बैरागी कहा है। इन सब चीजों की चर्चा मैंने अपनी पुस्तक कबीर ग्रंथावली का जो नया संस्करण है परिमार्जित, उसमें इन सब चीजों की चर्चा की है और अन्यत्र जगह भी की है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि अनंतदास और सब जगह इस बात को मिलता है, इस सब जगह इस बात के प्रमाण मिलते हैं। कबीर को परसिक्यूट किया गया, इसका भी कुछ संकेत कबीर की अपनी रचना में और अनंतदास की परचई में मिलता है। अनंतदास की परचई में, अनंतदास ये बताना जरूरी है, अनंतदास एक अनोखे संत थे, रामानंदी परंपरा के थे, सखी संप्रदाय के थे, रसिक संप्रदाय के, और उन्होंने 1588 से शुरू करके 1600 तक कई संतों की परचईयां लिखी, नामदेव परचई, पीपा परचई, रैदास परचई और कबीर परचई। परचई का मतलब होता है परिचय, परिचय से बनाइए शब्द, परिचय का स्त्रीलिंग कर दिया तो परिचय, कबीर परिचय, कबीर का परिचय। लेकिन अगर आप अपने बचपन में सुनी हिंदी याद करें तो परचा का एक और अर्थ होता है, और परचा का वो अर्थ होता है चमत्कार, मिरेकल, कॉम्पिटेंस। कहावत है हिंदी में, देवी दिन काटे पंडा परचा मांगे। देवी बेचारी किसी तरह दिन काट रही है और पंडा कह रहा है कि परचय, परचा दो, चमत्कार करके दिखाओ। तो ये जो परचैया हैं, इनमें भी आपको उस तरह की बायोग्राफी नहीं मिलेगी जैसी आप आज उम्मीद करेंगे। यानी अनंतदास आपको ये कहीं नहीं बताते कि कबीर का जन्म किस तारीख को हुआ या निधन किस तारीख को हुआ। वो कबीर की चमत्कारिक शक्तियों का परिचय देती है, लेकिन वो चमत्कारिक शक्तियां भी जो हैं वो कबीर की भक्ति के चमत्कार हैं। और ज्यादातर कबीर खुद चमत्कार नहीं करते, कबीर के लिए भगवान चमत्कार करते हैं, ये ध्यान देने की बात है। कबीर खुद कोई करामात ज्यादा नहीं दिखाते, लेकिन जैसे मान लीजिए कि उनको जंजीरों में बांध करके गंगा जी में फेंक दिया गया कि डूब जाए, तो जंजीरें टूट जाती हैं और कबीरदास गंगा जी पर बैठे हुए नजर आते हैं, ये भगवान का चमत्कार है। हाथी उन्हें कुचलने के लिए भेजा जाता है, हाथी खुद उनको प्रणाम करके वापस चला जाता है, ये भगवान का चमत्कार है, ये कबीर के भक्ति के चमत्कार है। तो कबीर जिस तरह की बातें करते थे, उसकी वजह से जाहिर है कि जो संगठित धर्म के लोग थे, जो समाज के सो कॉल्ड ओपिनियन मेकर्स और लीडर्स थे, विभिन्न सोशल आइडेंटिटीज के ठेकेदार और पैरोकार थे, उनको तकलीफ होती थी। तो जब सिकंदर, अनंतदास की परिचय के मुताबिक, जब सिकंदर लोदी अपने किसी अभियान के तहत

0: बनारस पहुंचा, बनारस के पास उसने पड़ाव डाला तो जाकर के उससे शिकायत की गई। और ये ध्यान दीजिए, ये बहुत आयरनिकल टच है, ट्विस्ट है। आनंददास बताते हैं कि ये बनारस के हिंदू और मुसलमानों का जो डेलीगेशन कबीर की शिकायत लेकर सिकंदर से मिलने गया, उसमें कबीर की मां जो है वो लीड कर रही थी, कबीर की मां उसमें शामिल थी। हम कल्पना कर सकते हैं कि शायद इसलिए शामिल रही होंगी कि वो खुद भी परेशान थी कि हमारा बेटा अमारक करता है, मुसलमान घर में पैदा होकर वैष्णव की तरह बातें करता है, राम का नाम लेता है। तो उच्चरण उन्होंने प्रकट की है आनंददास की परिचय में भी और कबीर की खुद की रचना में भी वो चर्चा आती है। और कबीर की पंक्ति है, कबीरा संत नदी गए वो बहेरे, ठाड़ी माए कड़ारे टेरे ले कोई लावे गहेरे। कबीर की माँ नदी किनारे खड़ी होकर रो रही है कि मेरा बेटा तो इस भक्ति की नदी में बह गया, कोई इसको खींच लाओ बाहर। और जगह भी मिलता है, तन्ना बुन्ना तजिया कबीर, राम नाम लिख लिया शरीर। ये खुद कबीर की पंक्ति है, ये कबीर की माँ का जो दुख है, उनका जो उनकी जो कंप्लेंट है वो कबीर खुद दर्ज कर रहे हैं कि अपना काम छोड़ दिया, सारे देह पर सारी जिस्म पर राम नाम लिखे घूमता है। तो बहरहाल जो भी हो वो गई। अब जो वहां शिकायत की गई है उस पर ध्यान दीजिए, मैं पढ़ता हूं हिस्सा अनंतदास के शब्दों में। कहे सिकंदर क्या है भाई, गांव परगना लिया छिनाई, गांव परगना नहीं लिया, जुलाहे एक इमारत किया। सिकंदर पूछता है क्या हो गया, ऐसी क्या शिकायत आप लेकर चले हैं, जुलाहे ने क्या बिगाड़ दिया है, किसी की जमीन जायदाद दबा ली है, किसी का गांव परगना छीन लिया है। तो उत्तर है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं किया, ये अमारक चलता है। और अमारक चलता है का मतलब मुसलमान की छोड़ी रीति अरु हिंदू की भाने छीती। मुस्लिम घर में पैदा हुआ है लेकिन मुसलमानों की रीति रिवाज इसने छोड़ दिए और हिंदुओं की भी आलोचना ही करता रहता है। निंदे सकल धर्म की आशा, सभी धर्मों की आलोचना करता है। सभी धर्मों का मतलब उस समय हिंदू और मुस्लिम दो मुख्य धर्म उपलब्ध थे। ऐसी विधि सब लोग बिगारा, हिंदू मुसलमान ते न्यारा, जब लग जुलहा काशी होई, ताते हमें माने ना कोई। इसने सब लोगों को बिगाड़ दिया है, हिंदू और मुसलमान से यह अलग राह चलता है, अलग राह चलने की बात करता है। और सबसे आखिर में सबसे असली बात कि जब तक ये जुलाहा काशी में रहेगा हमारी बात कोई नहीं मानेगा। यानी पंडित और मौलाना जो आपस में आमतौर से लड़ते रहते होंगे वो इस मामले में एकमत है कि इस व्यक्ति के कारण हमारा सामाजिक प्रभाव घटता चला जाएगा, कम हो जाएगा, और इसलिए सिकंदर आप इसका कुछ उपचार कीजिए, इसको दफा कीजिए यहां से।
1: ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨਾਟਕ ਮੇਲਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨਾਟਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕੈਲਗਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। 3 ਵਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨਾਟਕ ਮੇਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਰ ਗਏ, ਇਹ 2 ਨਾਟਕ ਜਿਹੜੇ ਖੇਲੇ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਰ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੇਖਕ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ, ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਖੇਲੇ ਜਾਣੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। 3 ਵਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ, $10 ਦੀ ਟਿਕਟ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦਾ ਨਿਊ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 1916A30 Avenue ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਟਿਕਟਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, 403-606-6445 ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਬਟ 5877716 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਤੇਜ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 403-400-0203 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕੈਲਗਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨਾਟਕ ਮੇਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ।

0: ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए। सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर, जहां होता है एनर्जी एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन। चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग, कोई खास इवेंट, प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन, हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते, हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं। हमारी टीम पहुंचती है आपके पास, लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में। ज्यादा पहचान, ज्यादा भरोसा, ज्यादा ग्राहक। अपने बिजनेस को बनाइए खास, दिखाइए, सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए। आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ, आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी। Monday, Tuesday, Thursday and Friday 7 to 8 p.m. Sunday 1 to 5 p.m.
4: Asia Pacific Immigration Consulting Limited. Student visa, visitor visa, super visa, LMIE applications, family immigration, provincial nominee application, ate citizenship application vich lamba tajruba te maharat rakhda hai. Tuhadi sahulat layi main Maninder Singh Tillon ate Inderjot Kaur Tillon ikko chhat het immigration ate insurance diyan sewawan pradan karde hain. Sanu sampark karn layi 403-225-1111. Maninder Singh Tillon, Asia Pacific Immigration Consulting Limited.
5: Regulated Canadian Immigration Consultant.
4: 403-225-1111.
6: The time is 3 p.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.

0: वो जो बैठे हैं
1: कौन?
0: वो नहीं जो उनसे परे बैठे
1: पीछे,
0: वो जो बैठे हैं वो नहीं जो उनसे परे बैठे हैं, तुम जाकर कोई कह दो।
1: क्या कह दें?
0: हम उन पर मरे बैठे।

0: क्यों मैं बोलती हूँ उनकी वही तो वो तो आएंगे
1: जैसे कि मोखा जी तशरीफ लेके आए हैं तो ये शेर आपकी नजर और ये जो महफिल है वो मेरे छोटे भाई रॉबिन की तरफ से सजाई गई है तो उनकी तरफ से आपको और हमारी तरफ से आप दोनों को कैसे

0: हाँ भाई बात याद आ गई मुझे एक।
1: कौन दो?
0: पीर बुले शाह ने बोला, लोग बोलते महाराज आप भी तस्बीह फेरते हो, तस्बीह खुदा के नाम की उनको भी खुश करते। कहते नहीं मैं वो लकड़ी की तस्बीह नहीं फेरता। मैं लकड़ी की कौन सी? पीर बुले शाह कहते ये जितनी अच्छी सूरतों वाले हैं मेरी तस्बीह के दाने, ये जितनी अच्छी सूरतों वाले हैं मेरी तस्बीह के दाने।

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0200-403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। लिसनिंग टू कैलगरीज़ मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो सबरम 94.7 एफएम।
4: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250-kilometer network. More visibility, more trust, more customers. Let your business be seen, heard, and celebrated. Book your live promotion today with Sabrong Radio. Your brand, on air and on ground. Visit sabrong.ca or call 403-400-0203.
0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca।
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
5: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए। सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर, जहां होता है एनर्जी, एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन। चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग, कोई खास इवेंट, प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन, हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते, हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं। हमारी टीम पहुंचती है आपके पास, लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में। ज्यादा पहचान, ज्यादा भरोसा, ज्यादा ग्राहक। अपने बिजनेस को बनाइए खास, दिखाइए, सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए। आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ, आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी। Monday, Tuesday, Thursday and Friday 7 to 8 p.m. Sunday 1 to 5 p.m.
6: Asia Pacific Immigration Consulting Limited. Student visa, visitor visa, super visa, LMIA applications, family immigration, provincial nominee application, ate citizenship application vich lamba tajruba te maharat rakhda hai. Tuhadi sahulat layi main Maninder Singh Tillo ate Inderjot Kaur Tillo ikko chhat het immigration ate insurance diyan sewawan pradan karde han. Sanu sampark karn layi 403-225-1111. Maninder Singh Tillo, Asia Pacific Immigration Consulting Limited.
7: Regulated Canadian Immigration Consultant.
6: 403-225-1111.
5: From the heart of Calgary to every corner within a 250-kilometer reach, Sabrang Radio is connecting voice.

0: ਮੱਧ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਵਕਤ ਮਿਰਜ਼ਯੋਯੇਵ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਰਾਜ ਸਨਮਾਨ ਔਲੀ ਦਰਾਜ਼ਲੀ ਦੌਸਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਜ਼ਬੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਦੋਸਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ 36ਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਰਜ਼ਯੋਯੇਵ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵੱਲੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਦ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।
1: ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਬਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
2: ਨੇਪਾਲ ਮੇ 26 ਅਗਸਤ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕੋ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਬਾੜ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਸੇ ਲਗੇ ਸੀਮਾਈ ਇਲਾਕੋ ਮੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਸੈਂਕੜੋ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਤਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਅਬ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। इस बीच नेपाल और तिब्बत के बीच मुख्य सीमा चौकियों में से एक ग्योरिंग पोर्ट का एक वीडियो सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि पोर्ट से पानी का तेज बहाव होकर गुजर रहा था और अपने रास्ते में सब कुछ बहा ले जा रहा था। दूसरी तरफ सैकड़ों लोग अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भाग रहे थे। सीसीटीवी कैमरों में कैद ये दृश्य तेजी से सोशल मीडिया और दुनिया भर की स्क्रीन पर पहुंच गए, लेकिन चीन में ऐसा नहीं हुआ। अब तक देश के सरकारी मुख्य समाचार बुलेटिन में इन दृश्यों की सिर्फ एक तस्वीर प्रसारित की गई है। एक तरफ नेपाल में हुई तबाही की जानकारी पूरी दुनिया को मिल पा रही है, मगर तिब्बत में हुई तबाही की जानकारी इसी तरह क्यों नहीं मिल पा रही? आज पहली खबर में इसी पर बात। चीन ने सैकड़ों आपातकालीन कर्मचारियों को शामिल करते हुए बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया है, जो अब भी जारी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी अधिकारियों के साथ आपात बैठक की अध्यक्षता कर राहत और बचाव कोशिशों के समन्वय की समीक्षा की। मृतकों और लापता लोगों की संख्या को लेकर रोजाना अपडेट जारी किए गए हैं, लेकिन इसके अलावा ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। तिब्बत में बचे लोगों की आपबीती सामने नहीं आई है और न ही बाढ़ के भयावह क्षणों या उसके बाद के हालात को दिखाने वाले बनाए गए वीडियो देखने को मिल रहे हैं। लापता लोगों के चिंतित परिवारों की आवाज भी अभी सुनाई नहीं दी। दुनिया को जो प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत धीमी या सीमित नजर आ सकती है, उसकी वजह उस एक चीज को बचाए रखना है जिसे शी अपने देश के लिए सबसे ज्यादा चाहते हैं, यानी स्थिरता। कम्युनिस्ट पार्टी को डर होगा कि ऐसी आपदा से लोगों में असंतोष पैदा हो सकता है, चाहे वो राहत और बचाव कार्यों को लेकर हो या इस बात को लेकर कि आपदा को रोकने के लिए पहले से पर्याप्त तैयारी क्यों नहीं की गई। उसे ये भी डर हो सकता है कि इस तरह की त्रासदी का क्या असर पड़ेगा और ये लोगों को एकजुट करने का कारण बन सकती है, खासकर ऐसे समुदाय में जहां लंबे समय से आस्था की केंद्रीय भूमिका रही है। हालांकि इस क्षेत्र में लंबे समय से कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ है, लेकिन विदेशों में रह रहे तिब्बती समूहों ने चीन के बढ़ते नियंत्रण को लेकर चिंता जताई है। इनमें शिक्षा से जुड़े नए कानून भी शामिल हैं, जिनके बारे में उनका कहना है कि इनका मकसद मठों और बौद्ध धर्म की भूमिका को कमजोर करना है। आपदा आने के कुछ ही घंटों बाद कम्युनिस्ट पार्टी के तंत्र ने भूस्खलन से निपटने के सरकार के तरीके को लेकर असंतोष के किसी भी संकेत को रोकने के लिए अपने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना शुरू कर दिया। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार इस क्षेत्र में तिब्बतियों को पत्रकारों से बात करने या ऑनलाइन ऐसी कोई सामग्री पोस्ट करने के लिए हिरासत में लिया जा सकता है या गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसे सरकार के आधिकारिक नैरेटिव के विपरीत माना जाए। इस वजह से क्षेत्र से बाहर रहने वाले तिब्बतियों के लिए ये पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि उनके रिश्तेदारों के साथ क्या हुआ। इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत ने इलाके में राहत और बचाव कर्मियों के काम की सराहना करते हुए कहा है कि बीजिंग सोशल मीडिया से वीडियो और अन्य प्रत्यक्ष जानकारी हटा रहा है। संगठन ने चीनी अधिकारियों से नुकसान और हताहतों के बारे में पूरी और सत्यापन योग्य जानकारी सार्वजनिक करने की अपील की है। इसका मतलब ये नहीं है कि बीजिंग इस घटना को लेकर चिंतित नहीं है, बल्कि वो बेहद चिंतित है। चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग को तुरंत उस इलाके में भेजा गया जहां

0: रहे मलबा हटाने के काम का निरीक्षण करते देखा गया। इतनी बड़ी आपदा के तुरंत बाद देश के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण नेता का इस तरह दौरा करना दुर्लभ है। तिब्बत, जिसे चीन ने 1950 के दशक में अपने नियंत्रण में ले लिया था, लंबे समय से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शासन का विरोध करता रहा था। चीन ने वर्षों से विरोध प्रदर्शनों को दबाया है, कई बार हिंसक तरीके से भी, और उस पर इस बौद्ध क्षेत्र में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोप लगते रहे हैं। उसने निर्वासित आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को अलगाववादी करार दिया है। इस इतिहास का मतलब है कि तिब्बत नाम भर से चीन के सेंसर सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे समय में बीजिंग की संवेदनशीलता और भी स्पष्ट दिखाई देती है। हालांकि बीजिंग इस बात से इनकार करता है कि वो तिब्बतियों के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, फिर भी इस समय चीन में लोगों को तिब्बत में वास्तव में क्या हो रहा है इसकी बहुत कम जानकारी होगी।
1: चाइना वाले साइड तो जड़ी इन्फॉर्मेशन आम नहीं पहुंचती, बट ओदे नाल नाल आपा अपने प्रोग्राम च थोड़ी जी गलबात अगे वधाईए कि भी जड़ियां चीजां करन वालियां ने ओदे ते भी प्रोग्राम जड़ा है अज दे प्रोग्राम च आपा अपनी गलबात जारी रखनी है। तो थोड़ी जी गलबात जी नेपाल दे नाल रिलेटड एक ऐसी जगह की इनफॉर्मेशन दी जा रही थी जिथों 300 लोगों के जड़े शव मिले है, बेसिकली वो भी तुहाडे नाल गलबात जी शेयर कर दी है क्योंकि थोड़ी जी गलबात सुन लें फिर इस तो बाद आप अपनी होर गलबात करते हैं।
2: सात लोगों की इस टीम ने फिलहाल यहाँ उस टापू से एक बॉडी को रिकवर कर यहाँ रखा है। नेपाल में 620 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। स्थानीय अधिकारी बताते हैं कि 26 अगस्त के फ्लैश फ्लड्स में मरने वालों के इस आंकड़े में 300 से ज्यादा शवों को यहीं चितवन के पास नदी से बरामद किया गया है।
3: मोर देन 300 डेड बॉडीज आर हियर।
2: नेपाल और भारत की सीमा से सटे चितवन में शवों को ढूंढने के इस सर्च ऑपरेशन को नेपाल आर्म्ड पुलिस फोर्स की ये टीम अंजाम दे रही है। हम पहुंचे तो हमें बताया गया कि इस टीम को कुछ और शवों के नदी में होने की जानकारी मिली है और ये टीम वहां जाने की तैयारी कर रही है। तैयारी का मतलब है पीपीई किट्स, लाइफ जैकेट और हेलमेट जैसी चीजें।
4: We also have
5: हमारी टीम में तीन गहरे पानी में गोता लगाने वाले गोताखोर हैं। हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो शवों को संभालने का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा हमें पानी में बचाव कार्य करने की भी ट्रेनिंग दी गई है।
2: इस टीम का कहना है कि क्योंकि ये इलाका जहां फ्लैश फ्लड्स हुए थे उससे काफी दूर है, इसलिए यहां किसी के जिंदा मिलने के चांसेस ना के बराबर है, और इसीलिए वो लोग नदी में बने टापू पर फोकस करते हैं ताकि शवों को जल्द से जल्द स्पॉट किया जा सके और निकाला जा सके।

0: इस टीम ने दो शव बरामद किए हैं। कुछ देर बाद पुलिस पहुंचती है और शवों को साफ करके वहां से ले जाती है।
1: क्या हुआ भाई?
0: आप देख सकते हैं कितनी चैलेंजिंग कंडीशंस में ये लोग काम कर रहे हैं। गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, हम पसीने से लथपथ हैं और वो लोग फुल पीपीई किट्स में अपना काम कर रहे हैं। ये इस टीम की रेस्क्यू बोट है। आप देख सकते हैं कि ये रबर की एक बोट है जिसमें मैकेनाइज पार्ट नहीं है। ये लोग उन रो हैंडल से इसको रो करते हैं और आगे पीछे जाते हैं। हमें अनुमति नहीं थी कि हम इनके साथ नदी के अंदर जाए क्योंकि एक रिस्क था, एक सिक्योरिटी इशू था, इसलिए हम अंदर नहीं गए। हमने इनको यहीं से फिल्म किया है। इस टीम का सक्सेस इस बात पर भी निर्भर करता है कि स्थानीय लोग इन्हें समय समय पर जानकारी देते रहते हैं।
2: वो बाढ़ तो भयंकर आता है, बहुत बड़ी बाढ़ आते हो।
3: 26 अगस्त को जब बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ा तो गैस सिलेंडर, गाय भैंस और यहां तक कि शव भी बहते हुए दिखाई देने लगे। इसके बाद हमने जहां जहां शव दिखे उसकी जानकारी अधिकारियों को देना और जितनी संभव हो सके उतनी मदद करना शुरू किया। हम लोग बहुत दुखी हैं। हम चाहते हैं कि सभी शवों को जल्द से जल्द

0: C6 बने। ये ग्रुप मध्य एशिया को कॉक्सस इलाके और तुर्की से और करीब से जोड़ता है। एक और बड़ी बात हुई है, फरगना घाटी में उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच सीमा का एक पुराना विवाद था, वो अब सुलझ गया है। आपसी व्यापार बढ़ने से इनका ये नया राजनीतिक सहयोग और मजबूत हुआ है, यानी मध्य एशिया अब सिर्फ 5 अलग अलग देशों का जोड़ भर नहीं रहा, वो खुद अपने आप में एक मजबूत इलाका बनता जा रहा है। दूसरा बदलाव ये है कि बड़ी ताकतों के साथ इनके रिश्तों का बंटवारा। एक पुरानी सोच थी जिसे ग्रेट गेम कहा जाता था, इसका मतलब था बाहरी ताकतों की एक खामोश और बेबस मध्य एशिया पर कब्जे की होड़, लेकिन ये सोच अब पूरी तरह से नाकाफी है। जरा 2025 पर नजर डालिए, इस साल में मध्य एशिया के नेताओं ने कई बड़ी ताकतों के साथ शिखर बैठकें की। यूरोपीय संघ, चीन, रूस, अमेरिका और जापान, मध्य एशिया को पहले कभी इतना नहीं पूछा गया और शायद पहले कभी वो किसी एक के साथ बंधने को इतना कम तैयार भी नहीं था। रूस आज भी सुरक्षा के मामले में एक अहम साथी है, लेकिन यूक्रेन युद्ध और चीन के बढ़ते आर्थिक दबदबे ने रूस की पुरानी बादशाहत को कमजोर कर दिया है। उधर अमेरिका भी एक नई सोच के साथ लौट आया है, यानी व्यापार, जरूरी खनिज और ऊर्जा के रास्तों पर जोर देना। यूरोप और जापान जैसे देश भी अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं। तो इन सबसे निपटने के लिए मध्य एशिया का जवाब क्या है, वही जिसे बहुदिशा यानी मल्टी वेक्टर स्ट्रेटजी कहते हैं। सबसे रिश्ता रखो पर किसी एक के साथ बंध कर मत रहो। ये काफी हद तक भारत की अपनी बहुगठबंधन नीति जैसा ही है।
1: सो ये आजकल दा जड़े स्टैंडर्ड चल रहे ने, हुण ये नहीं कि भी जे तुसी किसी नाल फौजी रिश्ता रखे तो यदा मतलब तुसी बाकी उहदे एक्टिविटीज नहीं कर सकते, या दूजे लोगों के नाल जिहदे नाल तुहाडा व्यापारक ठीक चलता उहदे नाल व्यापार ठीक रखो, जिहदे नाल इकोनमी ठीक रहिंदी है तो अपना उधर उल्लू सीधा करो। कहण दा मतलब भी जरूरी नहीं भी हर बंदे नाल हर जगह दे उत्ते खड़े होना जरूरी है तुहाडा, क्योंकि कैनेडा दे हालात भी तुसी देख रहे जिस तरीके दे नाल अमेरिका जिहड़ा दबन की कोशिश करता सीगा, ते हुण आलमोस्ट 70% जिहड़े लोकी ने वो कारनी दे नाल सहमत ने इस गल नूं लै के भी चंगा कीता तुसी टेबल तोड़ गए हो, इहो जिहे गंदे बंदे दे नाल डील करना ही मतलब गंदे बंदे नाल तुहाडी डील जिहड़ी है वो कोई चंगी डील हो ही नहीं सकती, वो गंदी डील ही होएगी। सो इस करके इहदे नाल डील ही नहीं करना चाहिए, जे नहीं उहनूं अपनी मर्जी करनी है करी जाण दो, वो तुहाडे ते टैक्स लाउंदा टैरिफ लाउंदा, तुसीं वी उहदे ते टैरिफ लाओ। तो किसी नूं भी कोई पक्का यार नहीं, कोई पक्का दोस्त नहीं, क्योंकि इकोनमीज दे टाइम दे उत्ते आपां अपने देश दा अपने कंट्री दा भला देखना। जिथे हुण आपां इंडिया दे नाल गलबात करदे हां, कैनेडा इंडिया, तो इस करके हुण रिलेशनशिप जिहड़े ने खुल गए ने कैनेडा दे चाइना दे नाल भी। सो पिछले कुछ एक समय दे विच ही इन्हां ने आलमोस्ट 96.4 बिलियन डॉलर की FTA लिआंदी है कैनेडा ने, जिहड़ा कि एक पिछले लंबे समय च कदी इदां नहीं होया ट्रैक रैकर्ड दे नाल। उस तों इलावा 3% लगभग या 3.25 यानी जिहड़ी ओह GDP दा ग्रोथ होई है, जिहदे नाल की है भी बाकी सारी इकोनमी भी जिहड़ी है जिस तरीके नाल अमेरिका दबदा पिया सीगा, ते हो सकदा सी सानू इदां लगदा भी आपां बहुत थल्ले दब गए पर दबे नहीं, आपां ते सगों होर अगे वधदे पए हां, जॉब्स भी आ रही ने, सब कुछ जिहड़ा वधिया हो रहा। डेफिनेटली नुकसान होएगा पर लोकी इस गल वास्ते भी तैयार ने कि भी ठीक है जे नुकसान होना भी आपां यूज टू हो जाएंगे। ते हुणे हुणे मैं एक खबर जिहड़ी देखी सी भी कोस्को दे विच जिहड़ा मीट या बीफ जिहड़ी हैगी तां अमेरिका ने पर उहनूं स्टैंप्स टू पैदा दी ला के भी प्रोडक्ट ऑफ कैनेडा कह के दिखाया गया। सो विच इज़ वेरी शेमफुल कि भी इन्हां लोकां वल्लों ये सारे एक्ट जिहड़े कीते जा रहे हैं। सो बिजनेस व्यापार की गलबात करिए तो 2 तों 4 अक्तूबर नूं कैनेडा इंडिया इंटरनेशनल एग्जीबिशन भी आपां करवा रहे हैं, जिहदे च तुसीं वध चढ़ के हिस्सा लै सकते हो। तो जे तुहाडा कोई भी दोस्त मित्र भैन भरा इंडिया या होर दुनिया के किसी कोने तों आना चाहते, क्योंकि इहदा नां कैनेडा इंडिया के नाल नाल कनेडियन इंटरनेशनल एक्सपो भी कहने हैं, ताकि तुसी इहदे च पार्टिसिपेट करना ते अपने आप नूं ते अपने बिजनेस नूं वधिया कराओ। जे कोई तुहानूं लगदा भी इत्थे एक्टिविटीज करना चाहते बड़े रीजनेबल ते वधिया पैकेजेस जिहड़े ने मैं रखे आ, जे तुसी उहदे च CIExpo.ca ते विजिट करके जानकारी लै सकते हो, जां मैनूं भी कॉल कर सकते हो 403-400-0203। ते पंजाब तों ते होर स्टेट्स तों काफ़ी जिहड़े बिजनेस वाले ने इस मौके दे उत्ते इत्थे पहुँच रहे हैं, तो जिमें जिमें उत्थे पहुँचेंगे उन्होंने नाल गलबात आप जारी रखांगे, तुहानूं भी उन्होंने नाल इंट्रोडक्शन जिहड़ी ओह कराते रहांगे। सो